रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामायिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर इसे 1 घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज 6 मई है और हम आज का कार्यक्रम भगवान कृष्ण के आह्वान से शुरू कर रहे हैं।

चली राधे रानी, ये था मन्ना डे की आवाज़ में भरत व्यास का लिखा हुआ और अरुण कुमार मुखर्जी का संगीत। फिल्म थी परिणीता। ये फिल्म 1953 में आई थी जिससे हमने ये भजन आपके लिए प्रस्तुत किया। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर, और मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। तो मित्रों,

मई के महीने में 27 मई को ईद उल अधा है। इंटरनेशनल और नेशनल डेज में 6 मई यानी आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, कल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 9 को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है, 11 की नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड मदर्स डे, 12 को इंटरनेशनल नर्सिस डे एंड 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको और भी इंटरनेशनल डेज के बारे में बताते चलेंगे। रेडियो हार्मनी आपसे जानना चाहता है मित्रों कि आप कुछ अलग सुनना चाहते हैं या किसी खास किसी मुद्दे पर हमें हमसे आप कवरेज चाहते हैं, तो कृपया हमें अपने सुझाव और अपने मांगे लिख भेजिए harmonyfm2xx@gmail.com पर। आज के हमारे कार्यक्रम में हम रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मदिन मना रहे हैं और रेड क्रॉस वीक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो तथ्यों और संगीत से भरी इस शाम के लिए आप आगे सुनते रहिए।

रिलीज हुई ये फिल्म चित्रलेखा, उससे ये गीत था जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, इसके बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था रोशन ने। आपको याद होगा ये फिल्म बहुत प्रचलित हुई थी और इसमें काम किया था अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, महमूद, मीनू मुमताज़, शोभना और समर्थ और बेला बोस ने। साथ में थी अचला सचदेव और जेब रहमान। तो मित्रों, पहला हमारा खास आज का कवरेज है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी पैदाइश हुई थी 7 मई को 1861 में,

2011 में ये एल्बम आई थी जिसका टाइटल था रंजना आमी आर आशबोना. इसके आर्टिस्ट थे कबीर सुमन, अंजन दत्ता, सोमलता आचार्य चौधरी और म्यूजिक और बोल थे स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर के. स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, डेथ इज नॉट एग्जिस्टिंग द लाइट, एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, इट इज ओनली पुटिंग आउट द लैम्प बिकॉज द डॉन हैज कम. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ 7 मई 1861 में और इनका देहांत हुआ था 7 अगस्त 1941. ये एक बंगाली बहुश्रुत थे जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण के कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार के रूप में काम किया. उन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकता के साथ बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को भी नया रूप दिया. वे गीतांजलि की गहन संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के लेखक थे. 1913 में टैगोर किसी भी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार भी. टैगोर के काव्य गीतों को आध्यात्मिक और मधुर माना जाता था. जहां उनका सुंदर गद्य और जादुई कविता भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से लोकप्रिय थी. वे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो थे. उन्हें बंगाल का कवि कहा जाता था. टैगोर को गुरुदेव, कोबी गुरु और विश्व कोबी जैसे उपनामों से जाना जाता था. कोलकाता की एक बंगाली ब्राह्मण जिनकी पैतृक जड़ें बर्दवान जिले और जेसोर में थीं, टैगोर ने 8 साल की उम्र में कविताएं लिखी. 16 साल की उम्र में उन्होंने छद्म नाम भानु सिंह, सूर्य सिंह के तहत अपनी पहली महत्वपूर्ण कविताएं जारी की, जिन्हें साहित्यिक अधिकारियों ने लंबे समय से खोई हुई क्लासिक्स के रूप में जब्त कर लिया. 1877 तक उन्होंने अपनी पहली लघु कथाएं और नाटक लिखे जो उनके वास्तविक नाम से प्रकाशित हुए. एक मानवतावादी, सार्वभौमिकवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी और राष्ट्रवाद के प्रबल आलोचक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश राज की निंदा की और ब्रिटेन से स्वतंत्रता की वकालत की. बंगाल पुनर्जागरण के एक प्रतिपादक के रूप में उन्होंने एक विशाल कैनन को आगे बढ़ाया जिसमें पेंटिंग, रेखाचित्र और डूडल, सैकड़ों ग्रंथ और लगभग 2000 गीत शामिल थे. उनकी विरासत विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना में भी कायम है. टैगोर ने कठोर शास्त्रीय रूपों को त्याग कर और भाषाई प्रतिबंधों का विरोध करके बंगाली कला का आधुनिकीकरण किया. उनके उपन्यास, कहानियां, गीत, नृत्य, नाटक और निबंध राजनीतिक और व्यक्तिगत विषयों पर बात करते थे. गीतांजलि, गीत अर्पण, गोरा, निष्पक्ष और घोरे बहेरे, घर और दुनिया उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं और उनकी कविता, लघु कथाएं और उपन्यास उनकी गीतात्मकता, बोलचाल, प्रकृतिवाद और अप्रकृतिक चिंतन के लिए प्रशंसित या आलोचना किए गए थे. उनकी रचनाओं को 2 देशों ने राष्ट्रगान के रूप में चुना.
भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनके काम से प्रेरित था। उनके गीत बांग्लार माटी बांग्लार जोल को पश्चिम बंगाल के राज्य गान के रूप में अपनाया गया। उनका जन्म आज ही के दिन 1861 यानी 7 मई 1861 में कोलकाता, जो कि कलकत्ता के नाम से जाना जाता था उस समय, वहां हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उनकी कविताएं, लघु कथाएं, गीत, नाटक और उपन्यास आज भी कला के विभिन्न क्षेत्रों में पूजनीय और विशेष विश्लेषित हैं।

आनंदो धारा बोही छे भुवने, आनंद की धारा आसमान से बह रही है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ का ये गीत गाया था श्रीकांत आचार्य ने। टैगोर एक दार्शनिक के रूप में शिक्षा पर टैगोर को विचार के विचार आज भी विचार को उकसाते हैं और चर्चा को प्रेरित करते हैं, जो आधुनिक भारतीय चिंतन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता और पहले गैर यूरोपीय साहित्य पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें उनकी अत्यंत संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविता के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत टैगोर को आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। उन्होंने अपना जीवन कविता, कला और संगीत को समर्पित कर दिया। भारतीय राष्ट्रगान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी। जब वे 16 साल के हुए तो वे भानु सिंह के नाम से कलाकृतियां बना रहे थे। उन्होंने 1877 में 16 साल की उम्र में भिखारिनी नाम से अपनी पहली लघु कहानी लिखी। इस बीच 1882 में उन्होंने 23 साल की उम्र में संध्या संगीत नाम से अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया। वे कालिदास की शास्त्रीय कविता से प्रेरित थे और उन्होंने खुद भी ऐसी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों कविताओं में बालक, पूरोबी, सोनार तोरी और गीतांजलि नामक कविताओं का संग्रह शामिल है। उनकी कुछ प्रसिद्ध लघु कथाओं में चौखेर बाली, काबुली वाला, अतिथि, चारुलता और भिखारिनी आदि शामिल हैं। और अतिरिक्त नस्त निरह, घरे बहेरे और गोरा उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वे 2000 से अधिक गीतों के रचयिता हैं, जिनमें भक्ति भजन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान शामिल है। टैगोर एक चित्रकार भी थे और उन्होंने वर्ष 1928 में 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू की थी। हालांकि वे कम उम्र से ही रेखा चित्र बनाते थे, उनके द्वारा बनाए गए चित्र कभी कभी राक्षसी और भयंकर दिखते थे, मानो ये समाज की बुराइयों के प्रति उनके गुस्से की अभिव्यक्ति थी। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक महिला चेहरा में एक महिला को क्षैतिज धारियों में रंगों की एक पट्टी से घिरा हुआ दिखाया गया है और रहस्यमय प्रतीत होती है। गुलाबी और भूरे रंग की स्याही के हल्के रंगों में एक महिला का चेहरा मासूम, कोमल आंखों से दर्शकों को देख रहा है। पेंटिंग में लगभग बच्चे जैसी सादगी दिखाई देती है। मानव अधिकारों के हिमायती टैगोर भारत में प्रचलित अनुचित जाति प्रथा के खिलाफ थे। उन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था की बुराइयों की निंदा की, जिसने लाखों लोगों को गरीबी की गिरफ्त में डाल दिया और लोगों के एक समूह को अछूत माना।

Life Power, the Red Cross song. This was a grand prize winner at the Philippine National Red Cross songwriting competition in 1999. The theme of that competition was Red Cross as the Power of Humanity. This song has been performed by Red Cross and Red Crescent societies around the world. Red Cross सप्ताह का एक समृद्ध इतिहास है जो Red Cross की व्यापक कथा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है. Red Cross एक वैश्विक मानवीय संगठन है जो आपदा और संघर्ष से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए स्थापित किया गया है. Red Cross का विचार हेनरी डुना से आया जो एक स्विस व्यवसायी थे जो 1859 में सोलफेरिनी की लड़ाई में सैनिकों की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सके. डुना के प्रयासों से 1863 में रेड क्रॉस का की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC का गठन हुआ. इस घटना ने जिनीवा सम्मेलनों को अपनाने का नेतृत्व किया जिसने युद्ध के दौरान मानवीय उपचार के लिए कानूनी मानकों को निर्धारित किया. पिछले कुछ वर्षों में रेड क्रॉस दुनिया की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है. उदाहरण के लिए क्लारा बार्टन ने 1881 में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की जो जल्दी ही आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा राहत प्रयासों में एक प्रमुख शक्ति बन गई. शुरुआती पहलों में 1912 में टाइटैनिक आपदा के बचे लोगों की सहायता करना और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सहायता प्रदान करना शामिल था. रेड क्रॉस सप्ताह रेड क्रॉस के चल रहे मानवीय कार्यों का समर्थन करने के लिए जागरूकता और धन जुटाता है. इस सप्ताह में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस शामिल हैं जो मई को डुना के जन्मदिन के साथ 8 मई को पड़ता है. यह सप्ताह रेड क्रॉस के वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डालता है और कार्यक्रमों और दान के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है. विभिन्न समुदायों के लोग धन उगाहने वाले कार्यक्रमों और अन्य धर्मार्थ गतिविधियों में भाग लेकर ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए एक साथ आते हैं. रेड क्रॉस सप्ताह का उद्देश्य दुनिया भर में संकटों से प्रभावित लोगों की सहायता करने में रेड क्रॉस द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य को उजागर करना और उसका समर्थन करना है. चाहे प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों का जवाब देना हो या ऐसी घटनाओं से विस्थापित लोगों की मदद करना हो, रेड क्रॉस सहायता और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस सप्ताह के दौरान समुदाय इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए विभिन्न धन उगाहने वाली गतिविधियों में शामिल होते हैं. वे बदलाव लाने में दयालुता और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति पर जोर देते हैं. यह सप्ताह रेड क्रॉस के प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करने और अधिक लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करने को एक अवसर प्रदान करता है. रेड क्रॉस सप्ताह में भाग लेकर व्यक्ति एक वैश्विक नेटवर्क में योगदान दे सकते हैं जो आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करता है और ज़रूरत के समय में मानवीय गरिमा और स्वास्थ्य का समर्थन करता है. कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से रेड क्रॉस न केवल आवश्यक धन जुटाता है बल्कि दुनिया भर में समुदाय और मानवीय सेवा की भावना को भी बढ़ावा देता है.

Insan, a musical dedication to humanity. They say being human is given, but keeping our humanity is a choice. So this was an in-house creation by Alan Guru Kripa Productions called Insan. And the song was sung by Alan's student, Piyush Panwar. The ICRC, friends, is a neutral, independent organization ensuring humanitarian protection and assistance for people affected by armed conflict and other violence. Their mandate under the Geneva Conventions is to provide humanitarian assistance to people affected by armed conflict and violence and promote the laws that protect victims of war. So, Mitro, aaj ke karyakram mein humne रविंद्रनाथ जयंती मनाई और साथ में रेड क्रॉस के हफ्ते के बारे में और रेड क्रॉस के बारे में बातचीत और चर्चा करी. आशा है कि आपको यह कार्यक्रम हमारा पसंद आया होगा. समय हो गया है और अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी. तो यहीं पर अरविंद गुप्ता का प्रणाम. आपसे अगले बुधवार शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी पीपल पावर्ड रेडियो 2XXFM 98.3 पर. बैठे रहिए, बने रहिए. हमारा अगला कार्यक्रम है लैटिनो अमेरिकन अहोरा.